अज मैं ओशे घरों लिया के आपनू शिकाया ता स्वामी रामानंद जी कहन लगे पाई उसकी मनोकामना पता ही की सी उच्चारण करो श्री वाहिगुरु क्योंकि जिसका शकीए उसका कारज भी करिए उसते ता मन विच ए भावना है भई महापुरखा नू भोजन करा के ते मैं ए उदे बदले दान लवा के मेरे घर कोई बूटा लग जावे उदे घर कोई औलाद नहीं सी होनी इस प्रसाद पिछे ता भावना है भई पुत्र दी ते फिर जे लियाए ता फिर उना दी भावना भी पूरी कर जा हुन तेनू उना दे घर जन्म लेना पेगा ए चम्यारा दा घर सी जिथे भगत रविदास जी दा जन्म होया ते हुन दुध नहीं पींदे बड़े जतन कीते बड़े सियाने सदे पर मां दा दुध नहीं सी पींदे क्योंकि स्वामी रामानंद जी दे नाल पूर्व जन्म दा संग होण करके अंतर जामी स्वामी रामानंद जी अज चम्यारा दे महले विचों आ लंगे इन्हां ने बेनती की थी महाराज साढ़े ग्रह

प्यार दिता ते आख्या भाई हुण जिवें भी होवे हुण तैनू ए दुध पीना पेगा इना दे घर विच पलना पेगा पर असी वैदा करदे हां के संसार विच रहिंदियां विचरदियां तू ईश्वर दा नाम चेते रखेगा तैनू सदा याद रहेगा। तो भगत रविदास जी जदों युवा अवस्था विच आए आपदा बचपन भी भगती भाव विच बीतिया ते जवानी भी भगती भाव विच बीती कई वेरा आप नूं ईश्वर दे दर्शन होए ते अज जदों भगवान जी दे दर्शन होए ना ते भगवान जी चोज करन लई कहन लगे सानू छूत ना कर सानू झूठा ना कर उचारण करो श्री वाहेगुरु क्योंकि तू चुम्यार है असी पवित्र हां चोज सन ता भगत जी कहंदे हन तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा हे ईश्वर हे वाहेगुरु तेरे विच ते मेरे विच अंतर कैसा है कदी गहना सोने दा जो गहना है और सोने दी अशरफी विच कोई फर्क लगे है उचारण करो श्री वाहेगुरु कनक कटक जिस तरह सोने विच ते सोने दे गहने विच कोई फर्क नहीं इसे तरह तेरे विच और मेरे विच भी कोई फर्क नहीं उचारण करो श्री वाहेगुरु जिस तरह जल विच बुलबुले उठते हन ओ कोई जल तो वखरे नहीं होंदे उना दी होंद जरूर वखरी होंदी है जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए इसे तरह हे वाहेगुरु असी तेरी अंश हां जिस तरह कनक कटक जल तरंग जैसा जिस तरह सोने दे गहने विच और सोने विच कोई फर्क नहीं जल दे तरंग विच और जल विच कोई फर्क नहीं हे वाहेगुरु असी भी तेरी अंश हां आप दे विच और साडे विच की फर्क है। भगत जी बड़े प्यार नाल भगवान भी चोज कर रहे हन ते भगत भी चोज कर रहे है भगवान जी दे नाल।

रब दा सुनेहा देंदे हन भाई आओ जुड़ो सच दे नाल ए दुनिया दे लोको क्यों परमा भुलेखिया विच पए हो एक परमेश्वर दा नाम सच है ओदे नाल जुड़ो आपे ही सारे पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। ते इसलिए भगत रविदास जी कहंदे ने तुम जो नायक आशो अंतर जामी प्रभ ते जन जनी जय जन ते स्वामी।

आवाज आई कि इस धरती ते बड़ियां पवित्र नदियां दरिया हन, आ समुंदर दा जल तेरे हाजिर है, एक बूंद ले इतना तरस रहे, इतना व्याकुल हो

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषव अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगदे हन, बाकी स्वर शुद्ध हन। इस राग दे आरोह विच ऋषव स्वर दा त्याग कीता जांदा है। इस दे गाउण दा समां दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करोगे ओ हन, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इस नूं राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, इस नूं गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार।

संग चाल अवध त्याग बिख्या जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दर गए सोए यो व्यापार बिरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोई तोई पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ पागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक विघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तह पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आकार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किच तिसका उ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊंच निर्मल हे करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जने आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए तह लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार।